आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 7 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: हाँ तो नैनों में
1: बिंदिया है,
0: माथे पे
1: बिंदिया है,
0: तो बालों में
1: गजरा है,
0: आँखों में
1: गजरा है।
0: ओहो।

बंधुओं बजाइए ढोल और बजाइए बाजा।

हाँ तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: अरे आज तो तुम शहर जाने वाले थे, गाड़ी छूट गई क्या?
1: छूटी नहीं, छोड़ दी। चलती गाड़ी से किसी ने खींच कर उतार दिया मुझे।
0: किसने?
1: तुमने।
0: मैंने? मैंने कैसे?
1: तुम्हारी यही पुकार कल रात मैंने सपने में सुनी थी और इसी पुकार ने चलती गाड़ी से मुझे उतार दिया। जा रहा था शहर नौकरी करने, और जो काम करना नहीं चाहता था वही करने के लिए राजी हो गया।
0: कौन सा काम?
1: डोली उठाने का। अब रोज यहां आया करूंगा तुम्हारी पुकार सुनने के लिए। क्या हो गया तुमको?
0: मुझको कुछ नहीं हुआ, तुमको हो गया।
1: हा? मुझको?
0: हाँ हाँ तुमको।
1: कौन सा पागलपन देखा तुमने मुझ में? मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की?
0: पागलपन नहीं तो और क्या, दिन में मिली और रात को तुम्हारे सपने में आ गई। मैंने तो तुम्हें नहीं पुकारा था, फिर भी मेरी पुकार सुनकर चलती हुई गाड़ी से कूद गए। ऊपर से कहते हो रोज यही पुकार सुनने के लिए आया करूंगा, आखिर क्यों?
1: इसलिए कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
0: प्यार? बस बस रहने दो, एक बार मिलने से प्यार हो जाता है क्या?
1: यूं तो प्यार बरसों तक भी मिलने से नहीं होता, और अगर होता है तो एक ही मुलाकात में हो जाता है।
0: अपने दिल के कोरे कागज पर कहानी मत लिखो, वरना ये परेशानी उम्र

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 नून इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: जीवन को डर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: रे हाले हाले
1: छुपाते तू भी सुन जा।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ऑफ द वीक शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार अंतरा मस्ती में सुनिए दिए गए अंतरे पर आधारित गाने। लाइव शो में पार्टिसिपेट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से, जो है 91-35-84-12-32 यानी 9135841232। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम। स्वागत नहीं करोगे हमारा? आ चुके हैं लेकर सलमान खान को अपने साथ। मैं हूं अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। सबसे पहले जो सलमान खान जी हमारे साथ आए हुए हैं, पहले हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम अपना ओपनिंग गाना सुनाएंगे आपको। यह काम करते हैं, पहले ओपनिंग गाना सुनते हैं, फिर सलमान खान जी के बारे में हम सुनेंगे, है कि नहीं? ये गाना मेरे पसंद का, एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे और साथ में सुन रहे रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहिए दिल से और बहुत से दोस्त जुड़ते जा रहे हैं, सभी का वेलकम। सबसे पहले आज जुड़ने वाले हैं हमारे सरफराज जी, सर ये साउथ अफ्रीका से वेलकम है मेरे दोस्त, और बिट्टू कुमार जी जुड़ चुके हैं, नमस्कार कह रहे हैं सभी दोस्तों को। अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अशोक देशमुख जी, सभी दोस्तों को नमस्कार कह रहे हैं, वेलकम है सर जी आपका। दत्ता कदम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है दत्ता कदम जी। और रणवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं ये मुरादाबाद यूपी से, बहुत बहुत वेलकम है, और आज पहली बार आप मेरे प्रोग्राम में शिरकत किए हैं, बहुत बहुत आपका वेलकम है रणवीर सिंह जी। और मुझे लगा कि रणवीर सिंह वो हीरो नहीं ना आ गए, जस्ट जोकिंग। एंड साथ ही साथ बीके पंत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है बीके पंत जी आपका भी। और अमीना खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और साथ ही साथ राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है ग्रेटर नोएडा हबीबपुर से। और संध्या पटेल जी जुड़ चुके हैं, लिखती हैं कि हल्की सी ये शाम है, दिल में तुम्हारा नाम है और खुश रहो सदा तुम दिल से यही पैगाम है। और गुड इवनिंग भैया एंड सुनने वाले सभी दोस्तों को भी गुड इवनिंग, बहुत बहुत वेलकम है दीदी आपका भी। और साथ ही साथ राधा कृष्ण गोप जी हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी, सभी दोस्तों को नमस्कार कह रहे हैं। हुकुम चंद जांगड़ जी हैं, वेलकम है कोटा राजस्थान से। एंड नाहिद अंसारी जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम वेलकम है आपका भी। और नाजिम जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है नाजिम जी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं,
1: आरजे अमन सर जी सुसंध्या नमस्कार नमस्ते जी, हम भी जुड़े हुए हैं
0: जी जी,
1: और आपका ओपनिंग सॉन्ग बहुत लाजवाब, थैंक यू अपने इतना अच्छा गाना सुनाने के लिए, धन्यवाद।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी सर्वेश भगत जी। और सर्वेश भगत जी आपका नंबर मांग रहे हैं अजय भगत जी, ओके। और ज्योति जी लिखते हैं कि आपका ओपनिंग सॉन्ग लाजवाब सुपरहिट चल रहा है। एंड काजल झक्का जी लिखते हैं कि नमस्ते गुड इवनिंग, मैं भी जुड़ गई हूँ, सभी दोस्तों को भी नमस्ते गुड इवनिंग जी जी, वेलकम है आपका काजल झक्का जी। अशोक पाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अशोक पाल जी। और सर्वजीत सेठी जी,
2: अमन सर जी, नमस्ते
0: नमस्ते,
2: मैं सर्वजीत सेठी फाजिलका पंजाब से, कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छा, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: हम भी अपने स्थान पर ठीक हैं, हम भी आपके कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं
0: जी,
2: आपका ओपनिंग सॉन्ग बहुत ही शानदार लगा, तो सुनते रहिए रेडियो होश चार जो सबको दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद आपका भी सर्वजीत सेठी जी। और सुनीता गोप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और गजानंद सरकार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और अजय भगत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। आरजे वंशिका जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है। जाकिर खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और आरजे सोनी जी भी सुन रही हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और जितने भी दोस्त चोरी चोरी चुपके चुपके सुन रहे हैं, सभी का वेलकम वेलकम वेलकम। तो स्वागत नहीं करोगे हमारा, फिलहाल इनका स्वागत कीजिए और सुनिए ये क्या है इनके बारे में जानकारियाँ।
3: नाम अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान, जिन्हें हम सलमान खान के नाम से जानते हैं। जन्म 27 दिसंबर 1965। सलमान खान साहब का ये फिल्म करियर वाकई बड़ा जबरदस्त और बड़ा असरदार है। सलमान खान साहब के पुरखे दरअसल पठान रहे। महान लेखक सलीम खान साहब की पहली बीवी सुशीला चरक, जो कि बाद में सलमा खान बनी, इन दोनों के ये सबसे बड़े बेटे हैं। इनके दो छोटे भाई हैं अरबाज खान और सोहेल खान, बहन अलवेरा खान और अर्पिता खान। इनका परिवार दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर इलाके में रहा करता था, पिता इंदौरी माँ महाराष्ट्रियन। दरअसल जब इनके पिता सलीम खान ने इंदौर से मुंबई की तरफ रुख किया तो वो आए तो थे एक्टर बनने, पर वो बन गए जबरदस्त स्क्रिप्ट राइटर। सलमान खान साहब की स्कूलिंग हुई सेंट स्टानिस्लॉस हाई स्कूल बांद्रा से। ये ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में भी पढ़े और फिर ये एल्फिंस्टन कॉलेज पहुंचे। सलमान खान साहब ने मॉडलिंग से शुरुआत की और मन था कि ये भी स्क्रिप्ट राइटर ही बनेंगे। जल्दबाजी में फिल्म साइन की बीवी हो तो ऐसी, हालांकि सलमान खुद जानते थे कि बीवी हो तो ऐसी में इनका किरदार कोई खास नहीं है। ये वो वक्त भी था जब राष्ट्रीय फिल्म्स के सूरज बड़जात्या अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया बनाने जा रहे थे और सलमान खान को साइन कर चुके थे। सलमान खान ने खुद सूरज बड़जात्या को कहा कि आप मेरी फिल्म बीवी हो तो ऐसी देखें, लगता नहीं कि मैं आपकी फिल्म के हीरो बनने लायक हूं, मुझे अपना काम खुद पसंद नहीं आ रहा। तब सूरज बड़जात्या साहब ने वो फिल्म देखी और कहा कि सलमान भाई आप ही मेरी फिल्म के हीरो होंगे। और फिल्म मैंने प्यार किया ने इतिहास रचा। प्रेम फिल्म इंडस्ट्री में आया कि जब जब सिल्वर स्क्रीन पर प्रेम नाम पुकारा गया तो सलमान खान का ही चेहरा सामने आता है।
4: डॉक्टर प्रेम खुराना।
3: शुरुआत जरूर इन्होंने करी बतौर रोमांटिक हीरो, पर जब एक्शन की बात आई तो चाहे वो फिल्म सनम बेवफा रही के बागी, सलमान खान के एक्शन का कोई मुकाबला ना रहा। सलमान खान के एक्शन की भी सबने तारीफ की। जब भी पारिवारिक ऑडियंस की बात आती है तो सलमान खान का नाम सबसे ऊपर, चाहे वो फिल्म मैंने प्यार किया रही, कि हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, कि प्रेम रतन धन पायो। आज भी सलमान खान अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं मुंबई के बांद्रा इलाके में। बहुत सारे हीरोज को सलमान ने मेंटोर किया है, चाहे वो ऋतिक रोशन हो कि अर्जुन कपूर। यहाँ तक कि इनके शर्म बेवफा के डायरेक्टर सावन कुमार की भी इन्होंने मदद की जब ये नजर आए थे फिल्म सावन द लव सीजन में। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया तो यही कहते हैं कि ऊपर भगवान और नीचे सलमान। उतार चढ़ाव से घिरे हुए सलमान खान ने जब एक बार अपने आप को संभाला तब इन्होंने बॉक्स ऑफिस पे रेडी होकर ऐसी किक मारी कि हमारा बजरंगी भाईजान बॉक्स ऑफिस का सबसे ज्यादा वांटेड दबंग स्टार बना। बिग बॉस भी इन्हें सलाम करते हैं और सब जानते हैं कि रियलिटी शो 10 का दम में इन्होंने जो होस्टिंग की उसका कोई मुकाबला नहीं। चाहे आमिर हो कि शाहरुख, सभी जानते हैं कि सलमान का स्टारडम बड़ा मुख्तलिफ है। शाहरुख खान से इनकी लड़ाई जरूर हुई पर बाद में दोस्ती, और आमिर खान को इन्होंने अपनी पेंटिंग गिफ्ट की। सलमान खान कितने जबरदस्त पेंटर हैं ये बात उसी से साबित होती है। ये बात यकीन से कही जा सकती है कि सलमान खान से सभी प्रेम करते हैं।
0: बिल्कुल, सलमान खान से सभी प्रेम करते हैं। ओके, इसलिए तो आपका आज ये प्रेम दिख रहा है कि आपने इतने प्यारे प्यारे गाने की फरमाइश की। ओ माय गॉड, मैं किस गाने की फरमाइश को प्ले करूंगा, किसको नहीं करूंगा, मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ, है ना, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है आज की। लेकिन सबसे पहले जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ दो दोस्तों की, क्योंकि वो है बिट्टू कुमार और अशोक पाल जी, सुनना चाहते हैं फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम का वो प्यारा सा गाना जो मेरे लिए बना हुआ है। आ गया, आ गया।

बिल्कुल आ गया आप सबका दिल चुराने मैं आ गया और बहुत सारे फीडबैक भी आ गया है एंड जुड़ चुके हैं मुबारक हुसैन जी, बहुत बहुत वेलकम है मुबारक हुसैन जी। साथ ही साथ हमारे मतलब एनालिटिकल आनंद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है सर जी आपका भी। और पता नहीं नेटवर्क बहुत ही डिस्टर्ब चल रहा है, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं। अमीना खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अमीना खान जी, और इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और जयपंशिका जी लिखते हैं कि आ गया दिल चुराने आ गया, लाजवाब गाना मजा आ गया है। ज्योति जी लिखते हैं कि दोनों भाई साहब की पसंद लाजवाब। साथ ही साथ हुकुम जान जी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की पसंद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अशोक पाल जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। रवि मोहरी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और गजानंद जी लिखते हैं कि आ गया दिल चुराने मैं आ गया, दोनों दोस्तों की पसंद बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। राधा कृष्ण गोखी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की पसंद शानदार लगी है, बहुत धन्यवाद देते हैं। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि अमन जी दिल से धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और मैं अभी तो नहीं, मैं यानी कि चेक कर लेता हूँ, ओके। और फिलहाल अगला गाना इसी बात पर, जब मैं आ गया हूँ तो जरा उनका नाम भी पूछ लेता हूँ। अमीना खान जी सुनवा रही हैं ओ हरे दुपट्टे वाली, नाम बता दो प्लीज।

माय गॉड, आज तो सिर में इतना दर्द है, दाहिने साइड मत पूछो, बहुत ज्यादा। लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं, मैं आप सबके साथ हूँ। और राजेश कुमार लिखते हैं कि बहुत ही शानदार दमदार फरमाइश है। अमीना खान जी आपको थैंक यू सो मच। अमित थपड़िया जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। सभी दोस्तों का राम राम जी कह रहे हैं। और सरोजीत जी लिखते हैं कि कार्यक्रम का आगाज शानदार हुआ है। जी बिल्कुल। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है अमीना खान जी का, धन्यवाद। आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि हरे दुपट्टे वाली बेस्ट सॉन्ग लगा अमीना जी, थैंक यू सो मच। एंड सरिता सिन्हा जी जुड़ चुकी हैं, लिखते हैं कि सनम बेवफा का शानदार गीत सुनने को मिला, मजा आ गया। और अमीना खान जी लिखते हैं कि तहे दिल से शुक्रिया आरजे अमन जी, आज का प्रोग्राम तो बवाल मचाने वाला है। जी बिल्कुल, मच ही जाएगा, मत पूछिएगा नहीं, ऐसे इतने बेहतरीन बेहतरीन आए हैं कि मैं क्या ही बताऊं। और बलराम जी जुड़ चुके हैं, जमादार जी बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं कि ये पूर्णिया से है और लिखते हैं कि दोस्त, ये लिखते हैं कि दोस्त को दोस्त का सलाम लिखा है, लिखते हैं कि दोस्त को दोस्त का सलाम लिखा है, दिल में जो छुपा है वो पैगाम लिखा है, दुनिया भूल जाए तो भूल जाए हमें, पर इस दिल पर सिर्फ आपका नाम लिखा है। ओह थैंक यू सो मच। आज का थीम, आज के स्टार है सलमान खान, सलमान खान के गाने ही प्ले होंगे। और बाकी कोई भी दोस्त अगर उल्टे पुल्टे गाने भेजेंगे वो तो शामिल होने वाले वैसे भी नहीं है, वो कैंसिल हो जाएंगे। और जितेंद्र और ज्योति जी लिखते हैं कि अमन जी अमीना जी की पसंद ब्यूटीफुल लगी है। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब फरमाइश। एंड अमित तपैया जी लिखते हैं कि इश्क की कोई मंजिल नहीं होती, बस एक हम सफर काफी होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। नाहिद जी लिखते हैं कि सुपर फरमाइश अमीना जी, थैंक यू सो मच। एंड बीके पंजी लिखते हैं सर जी बहुत ही प्यारे गाने लगे हैं, थैंक यू सो मच। एंड अगला गाना इसी बात पर सुनाता हूँ, ये रितु जी ने भेजा हुआ है चांद का टुकड़ा, तू लगे चांद का टुकड़ा। बिल्कुल भाई, इनकी तारीफ में तो गाना बजाना पड़ेगा ना, सुनवाता हूँ।

बिल्कुल, मैंने देखे लाखों मुखड़े, ना देखा तेरे जैसा मुखड़ा, और तू लगे चांद का टुकड़ा। और जैसे कि मैंने कहा है कि गोरे गोरे गाल पे ये जो काला तिल है, गोरे गोरे गाल पे ये जो काला तिल है, और पिछले जन्म में दिया था तुझे वही तो मेरा दिल है। और मैं तो यही कहूँगा कि गोरे गोरे गालों पे काला काला तिल है, और जहाँ मेरी जान है वहाँ मेरा दिल है। वैसे फीडबैक भी बहुत सारा आ चुका है मेरे पास, और अमीना खान जी लिखते हैं कि सभी का फीडबैक देने वाले दोस्तों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक यू सो मच। एंड ज्योति जी लिखते हैं कि भाई साहब की पसंद लाजवाब, भाई साहब नहीं तो बहन जी थे आपकी। अशोक कुमार जी लिखते हैं कि अमन सर जी शुभ संध्या, और चांद का टुकड़ा ये सीडी पर फिल्माया हुआ शानदार गाना सुनने को मिला है, मजा आ गया सुन के। और सर्वजीत सेठी लिखते हैं कि जबरदस्त गीत, और राजेश कुमार जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है, और परवेश कुमार जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं। और बीके पंत जी लिखते हैं कि मैंने देखे लाखों मुखड़े, लाजवाब गाना है। इसी बात पर अगला गाना मैं सुनाऊंगा जिसे जिसे सुनना चाहते हैं रंजीत जी, एक चंचल शोक हसीना मेरे सपनों में आए, सच में एक चंचल शोक हसीना, इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल मेरे दिल का चैन चुराया, तो उसे ढूंढना पड़ेगा ना। ज्योति जी लिखते हैं कि भाई साहब की पसंद लाजवाब, जी बिल्कुल। और सरिता सिन्हा जी लिखते हैं कि रंजीत जी की पसंद सुनकर मजा आ गया। और दाता करम जी लिखते हैं कि रंजीत जी का गाना मुझे सुपरहिट लगा है। और अर्जवंशिका जी लिखते हैं कि एक चंचल शोक हसीना मेरे सपनों में आया, बहुत ही बेहतरीन फरमाइश लगा है। अशोक कुमार जी लिखते हैं कि बागी फिल्म का लाजवाब गाना सुनने को मिला, धन्यवाद देते हैं, मजा आ गया। बलराम जमादार जी लिखते हैं कि सर जी फरमाइश करना है अभी, क्योंकि इस समय तो मतलब यानी कि वैसे फरमाइश करने का समय दोपहर 2 से 3 बजे के बीच होता है, अगर उस समय करते तो मैसेज आपका शामिल हो जाता, लेकिन अभी करना होगा तो लाइव शो के लिए आपको सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से भेजना होगा, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपका मैं गाने को प्ले करूं। जाकिर खान जी लिखते हैं कि एक चंचल शोक हसीना सुपर हिट चॉइस लगी है। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि सुपर फरमाइश मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं। और अमित तपड़े लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग चल रहा है। और परवेश कुमार लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गाना है ये। और बीके पंत जी लिखते हैं कि सुपर फरमाइश एक चंचल शोक हसीना। और हमारे आनंद जी लिखते हैं कि एक चंचल शोक हसीना एक्सीलेंट सॉन्ग है, मेरे बचपन का ये गाना है, याद आ गया। अच्छा ये बात है, फिलहाल अगला गाना सुनवाता हूँ मैं, दीवाना मैं चला, उसे ढूंढे बहुत बहुत ही प्यार से अजय भगत जी सुनवाना चाहते हैं। अजय भगत जी क्या कहते हैं, इनका मैसेज शामिल करता हूँ मैं। अजय भगत जी लिखते हैं कि अमन जी आज मुझे सलमान खान के ऊपर फिल्माया हुआ फिल्म यानी प्यार किया तो डरना का गाना सुनना है, दीवाना मैं चला, उसे ढूंढने बड़े प्यार से। अमन जी सबसे पहले आपको, अर्जय वंशिका जी को, ज्योति जी को और अजय भगत जी को, और अच्छा अजय भगत जी और सर्वेश भगत जी को, सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं। मैं हूँ अजय भगत फ्रॉम किशनगंज से। जी अजय भगत जी गाना प्ले कर रहा हूँ आपका, इंजॉय कीजिए, दीवाना मैं चला, उसे ढूंढने बड़े प्यार से, इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक दीवाना, मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से, और वैसे फीडबैक भी बहुत आ गया है, बहुत प्यार से। मोहन निवारी जी लिखते हैं कि अमन जी मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम है और बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम। और गोविंदा खंडाते जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है गोविंदा खंडाते जी। अशोक कुमार जी लिखते हैं कि दीवाना मैं चला, बहुत ही शानदार पसंद है।

0: और अजय भगत जी मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं आपको। और सरबजीत सैनी जी लिखते हैं कि सभी गीत शानदार चल रहे हैं, साथ ही साथ अजय भगत जी लिखते हैं थैंक यू अमन सर जी मेरा गाना प्ले करिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं
1: अजय अमन सर जी, अजय भगत जी अपने गाने में शामिल किया, सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं।
0: ओके जी धन्यवाद,
1: स्वागत बोल रहे हैं
0: जी जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। ज्योति जी लिखते हैं भाई साहब की पसंद, धन्यवाद करती हूँ लाजवाब सॉन्ग सुनाने के लिए और फरमाइश में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके अमित तपड़े जी लिखते हैं कि ये लिखते हैं कि छुपा लूं तुम्हें अपनी बाहों में इस तरह की हवा भी गुजारने की इजाजत मांगे, हाँ हाँ छुपा लीजिए छुपा लीजिए। और बीके पंत जी लिखते हैं कि बेहतरीन फरमाइश दीवाना मैं चला। एंड और यहाँ पे जुड़ चुके हैं मिस्टर विजय राज जी, बहुत बहुत वेलकम है विजय राज जी आपका। और सभी दोस्तों को नमस्ते कह रहे हैं। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बेहतरीन पसंद मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं। अगली पसंद के लिए सुनवाता हूँ गजानन जी का ग्रुप की फरमाइश का वो गाना जिसे तो गजानन जी तो उसमें है ही शामिल, साथ ही साथ ये संजू भाव जी का ऑडियो पहले सुनता हूँ कि क्या कहते हैं संजू भाव जी।
2: रेडियो हॉटस्टार, रेडियो हॉटस्टार सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आरजे अमन सर जी,
0: जी
2: आपको भी हमारा दिल से प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार
2: अमन सर जी,
0: जी
2: कैसन बानी?
0: बहुत बढ़िया बानी, रोरा पति कैसन बानी?
2: ओके अमन सर जी हम भी बहुत ही बढ़िया बानी। अमन सर जी मैं फूले भक्त संजू भाऊ बोदवड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: वेलकम जी,
2: आज है शुक्रवार और आज की अपनी थीम है स्टार ऑफ द वीक। तो आज के कार्यक्रम में प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान जी, इनको आज बतौर मेहमान हॉट स्टार पर आमंत्रित किया है सर। तो आज के कार्यक्रम में इन्हीं के गीत चलने वाले हैं सर। तो हमने भी इन्हीं की एक फिल्म ली है सर, फिल्म का नाम है साजन और इसी फिल्म का एक गीत है सर जिसे मैं आपको गुनगुना के बोलता हूँ। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम, जो

0: तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। अमन सर जी,
1: जी
0: आप
1: जी,
0: एक गीत सुना दीजिए और डेडिकेशन याद करूंगा सर सबसे पहले आपको।
1: थैंक यू सो मच।
0: वेलकम अमन सर जी, बाद में आपके सुंदरता की मुहूर्त, क्योंकि सर यह गीत आप गा रहे हैं आपकी सुंदरता की मुहूर्त के लिए, तो यह गीत मैं उनको भी डेडिकेट करूंगा सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद सर उनके लिए भी। बाद में चुलबुली आवाज की मलिका मेरी छोटी और प्यारे बहन आरजे वंशिका जी, आरजे परमार जी और रेडियो स्टार सुन रहा है मेरा पूरा परिवार, यह गीत मैं सभी को डेडिकेट करूंगा सर, प्लीज सुना दीजिए। रेडियो स्टार जो दीवाना बना दे, आरजे अमन जी के साथ मैं फूले भक्त संजू भाऊ, धन्यवाद।
1: ओके जी, फूले भक्त संजू भाऊ जी, और इसी गाने में हमारे गजानंद जी का पूरा ग्रुप शामिल है, तो सुनवा रहा हूँ ये प्यारा सा तुमसे मिलने की तमन्ना, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है, मेरी जानम मेरी जानम मेरी जानम। फिर रेग भी आ चुका है बहुत सारा। और अभी जरा जी लिखते हैं कि सर जी मैं 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरा जी आप आज के थीम पर गाना भेजेंगे तो कोशिश करूंगा मैं। चूंकि देखिए फरमाइश भेजने का समय 2 से 3 बजे होता है, जो दोस्त अभी मतलब यानी लाइव शो में भेजते हैं उनका यानी कि चांसेस कम रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गाने होते हैं जो यानी कि बीच में प्ले होने वाले होते हैं कि हाँ अभी से स्टेप के बाद ये गाना प्ले हो सकता है, तो मैं उस गाने के लिए देर नहीं करता हूँ, मैं प्ले कर देता हूँ। ओके, आप समझ गए होंगे हमारी बात। और बीके पंजी लिखते हैं कि बेहतरीन फरमाइश है, थैंक यू सो मच। एंड सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: अरे अमन सर जी
0: की
1: फूले बख्शन जो भाव जी, गजानन सोलोकर जी, पूरे ग्रुप का भाई गाने में शामिल किए सभी भाई को भी धन्यवाद देते हैं जी।
0: और सर्वेश भगत जी आपकी तबीयत कैसी है जरा मुझे बताइएगा जरूर। और कुछ कह रहे थे शायद आप तब तक। अच्छा यहाँ पे सर्वेश जी लिखते हैं कि गजानन जी के ग्रुप की मिली जुली फरमाइश शानदार लगी है। और ये कुछ कह रहे थे हमारे सर्वेश भगत जी, मैंने इनका वॉयस मुझे लगा कि इनका कम्प्लीट हो गया इसीलिए
1: को भी धन्यवाद देते हैं जी। अच्छा, धन्यवाद।
0: ओके जी, अच्छा धन्यवाद था आपका, कोई बात नहीं। और ज्योति जी लिखते हैं कि गुरु फरमाइश भाई साहब की पसंद लाजवाब लगी है, सभी के लिए धन्यवाद। ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है,
0: अच्छा
2: और कोई वादा है?
0: और कौन सा?
2: ये सॉन्ग सबसे सुपर सॉन्ग और ग्रुप की फरमाइश पूरी करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मुझे इस गाने में शामिल करने के लिए सभी दोस्तों का धन्यवाद। मैं प्रेम सिंह साहू जी शाहबरता निधि से।
0: धन्यवाद है आपका प्रेम सिंह साहू जी। मोहन नवाज जी लिखते हैं कि गजानन जी के गुरु की फरमाइश शानदार लगी है। ओके जी। और नाहिद जी लिखते हैं कि गजानन जी की गुरु फरमाइश सुपरहिट अमेजिंग, थैंक यू सो मच गजानन जी। दत्ता जी लिखते हैं कि गजानन जी के ग्रुप का गाना मुझे अच्छा लगा है। एंड राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि सभी की पसंद सुपरहिट लगा है, बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। और आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि ये गजानन जी की क्या ग्रुप की फरमाइश बहुत ही शानदार बेहतरीन लगा है। अमीना खान जी लिखते हैं कि वाह ये सबसे बेस्ट मतलब यानी कि ग्रेटेस्ट यानी कि पसंद लगा है मुझे, धन्यवाद। अगला पसंद जो मैं सुना रहा हूँ राधा कृष्ण गोप जी का है, यानी वो है यानी कि प्यासा कुएं के पास जाता है, सुनवा दिया।

0: वेलकम बैक। और आज के गाने माय गॉड क्या ही बताएं, सभी सभी सभी एक से बढ़कर एक हैं। और ज्योति जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल पसंद है भाई साहब की आपकी। और अर्जपंशिका जी लिखती है कि प्यासा कुएं के पास आता है, वाह क्या लाजवाब गाना है। नाहिद जी लिखते हैं सुपर अमेजिंग फरमाइश राधा कृष्ण गोप जी। और ये फीडबैक
1: जी अमन सर जी, राधा कृष्ण गोप जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं। और अभी तबीयत ठीक है, दवाई वाई खाए हैं, पूरा ठीक नहीं है फिर भी ठीक है, बहुत अच्छा है, धन्यवाद सर।
0: ओके जी। और यहाँ पर राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि मेरे गाने को बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मोहन अमारे जी लिखते हैं कि सुपर हिट पसंद के लिए बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। राजेश कुमार लिखते हैं कि गुरु फरमाइश और ये गाना तो मजा ही आ गया, धन्यवाद।

0: ओके जी, और अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो बहुत से दोस्तों के गाने हैं, जिसमें शामिल हैं हमारे अशोक देशमुख जी और सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी और नंदलाल यादव जी। ये चारों दोस्तों की मिलीजुली फरमाइश है। तो सबसे पहले हम अशोक देशमुख जी का सुनते हैं। अशोक देशमुख जी क्या कहते हैं? अशोक देशमुख जी, हाँ ये रहा।
1: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार।
1: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी।
1: आज का थीम है स्टार ऑफ द वीक, तो मुझे सलमान खान पर फिल्माया गया एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी।
0: अच्छा अच्छा।
1: और गाने का बोल है, कब तक जवानी छुपाओगी रानी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। ये गीत सबसे पहले मैं आपको और आपकी सुंदरता की मूरत को और जितने भी रेडियो हॉटस्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
0: बिल्कुल सुनवाएंगे। और इसी में जैसे कि शामिल है सर्वेश भगत जी, मैंने कहा, और आत्माराम जी हैं और नंदलाल यादव जी हैं।
2: अर्जे अमन सर जी, सुसंध्या, नमस्कार। नमस्ते जी।
0: नमस्कार जी।
2: आज हमारा फरमाइश का फिल्म है मुझसे शादी करोगी।
0: हाँ।
2: और गाने का बोल भी है मुझसे शादी करोगी।
0: अच्छा,
2: और स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद।

0: हम सर्वेश भगत हजरजंदा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार छत्तीस भगत हेमंत भगत प्रश्वर भगत आनंद शेखर आनंद प्रकाश सोनी कुमारी मुनि कुमारी सूरज कुमार मनोज जय सुबाल अशोक देशमुख भाई जी आत्माराम पाटिल जी अनिल मेहता जी नंदलाल यादव जी आर जे अवंसर जी सुंदरता की मूरत जी आर जे वंशिका जी आर जे रत्ना जी आर जे एम एस परमार जी और सभी आर जे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें समय सभी को सुनाथ जी का जयराम जी की
1: ओके जी सुनवा रहा हूँ मुझसे शादी करोगी।

0: वेलकम बैक, मुझसे शादी करोगी सच में? और यहाँ पे फीडबैक भी आ चुका है बहुत सारा। ज्योति जी लिखते हैं भाई साहब की पसंद सुपर हिट लाजवाब लगी है। और यहाँ पे राजेश कुमार लिखते हैं कि सर्वेश भगत जी एंड सभी दोस्तों की मिलीजुली फरमाइश बहुत ही सुपर रोमांटिक लगा है। और तो, क्या नाम है, सरिता सिन्हा जी लिखते हैं कि मुझसे शादी करोगी, शानदार ये टाइटल गाना सुनकर मजा आ गया। और आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि सर्वेश जी, अशोक जी, सभी का गाना बहुत बढ़िया लगा है, धन्यवाद सभी का। और ये फीडबैक
1: जय अमन सर जी, धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद सर, हमारा फरमाइश अपने प्रोग्राम में शामिल कर दिए, हम चारों भाई का फरमाइश शामिल कर दिए, आपको लाख लाख धन्यवाद, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। और सर्वजीत जी लिखते हैं कि दोनों गीत लाजवाब लगे हैं। और साथ ही साथ बिट्टू कुमार जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गाना है सर जी। हाँ वो तो है। और इशाक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, लिखते हैं कि हम भी और बहुत अच्छे अच्छे गाने बज रहे हैं आज, तो मजा आ रहा है जी, आज तो मत पूछिए, सभी दोस्तों ने एक से बढ़कर एक गाने भेजे हैं। बीके पंजी लिखते हैं कि सर जी ये कब तक जवानी छुपाओ की रानी वाला गाना मुझे अच्छा लगा। अच्छा, अशोक देशमुख जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
2: धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा गीत पसंद करके सभी दोस्तों ने फीडबैक दिया, उनका भी धन्यवाद शुक्रिया। मैं निम्बरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी आपका भी। और मोहन हमारे जी लिखते हैं कि शानदार पसंद है, मुझसे शादी करोगी। और दत्तक जी लिखते हैं सर्वेश भगत जी, नंदलाल जी, सभी के पसंद बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सभी को। नंदलाल जी लिखते और नहीं जी लिखते हैं कि सर्वेश भगत जी और सभी दोस्तों की मिली जुली फरमाइश सुपर फरमाइश लाजवाब फरमाइश। राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गाना चल रहा है अमन सर जी। एंड अशोक कुमार जी लिखते हैं कि ये प्रियंका चोपड़ा पर फिल्म आया, शानदार गाना सुनने को मिला है, धन्यवाद देते हैं। और इसी बात पर अगला जो गाना है वो दो दोस्तों की पसंद है, राजेश कुमार जी और सुनीता गोप जी। हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना, हम तुमको चुरा लेंगे, बिल्कुल चुरा लेंगे, एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक और बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास और ना ही जी लिखते हैं वाओ ऑसम फरमाइश, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड एमडी परवेज आलम जी जुड़ चुके हैं और बहुत बहुत वेलकम है एमडी परवेज आलम जी आपका। अमीना खान जी लिखते हैं कि अच्छा अब पता चल गया नहीं जी ऐसी बात नहीं है। और हमारे इसहाक जी लिखते हैं कि अरे वो मुझे ना वो फिल्म यानी कि कभी खुशी कभी गम का वो डायलॉग, मतलब शाहरुख खान का जो डायलॉग है ना वो मतलब आ गया है याद कि हम तो हलवाई का दुकान हड़प के रहेंगे, वही मैंने कह दिया। और ज्योति खटवाड़े जी लिखते हैं कि लाजवाब फरमाइश चल रहा है, धन्यवाद देते हैं। और आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि वाह वाह क्या गाना है जी, बिल्कुल। और बीके पंत जी लिखते हैं कि बेहतरीन फरमाइश है, हम तुमको निगाहों में बसा लेंगे। राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि हमें श्रीमती जी के पसंद बहुत ही सुपरहिट लाजवाब लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। राजेश कुमार जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन सर जी गाना प्ले करने के लिए। और अभिषेक तिवारी जी यहाँ लिखते हैं कि नमस्ते अमन सर जी, मैं भी जुड़ चुका हूँ, बहुत बहुत वेलकम है। मोहन अमार लिखते हैं कि सुपरहिट पसंद चल रहा है अमन सर जी, बहुत मजा आ रहा है। और सुनीता गोप जी यहाँ भी लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा गाना आपने प्ले कर दिया। अगली पसंद है यहाँ पे संध्या पटेल जी का भोपाल से कि तुम पर हम है अटके यारा, इंजॉय।

0: वेलकम बैक और बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास। और सबसे पहले तो हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पे सर्वजीत जी लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत गाना है जी। और सर्वजीत जी क्या कहते हैं?
1: जय मानसर जी, संध्या पटेल जी और सुनीता गोप जी दोनों बहन अपने अपने गाने में शामिल किए, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और उनके पास है आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि ये तुम पर हमें हट के यार वाला गाना लाजवाब लगा है, धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ नाही जी लिखते हैं कि वंडरफुल फरमाइश है संध्या पटेल जी, थैंक यू सो मच। और ज्योति जी लिखते हैं कि संध्या जी की पसंद लाजवाब लगा है। और बी के पंजी लिखते हैं कि सर जी सुपर फरमाइश चल रहा है तुम पर हमें हटके यार। अच्छा, और ये फिर देख।
2: हेलो आरजे अमन सर, सूरत गुजरात से अनिल मेहता, मैं भी जुड़ गया हूँ आपके लाइव शो में। आज तो एक से एक बढ़कर गाने चल रहे हैं। सलमान खान की सभी फिल्में बहुत अच्छी है, थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका भी। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि सुपर फरमाइश मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि तुम पर हमें अटके यारा, दिल भी हमारे झटके, वाह मजा आ गया इस गाने को सुनकर। विलास निकम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है विलास निकम जी। नाजिम जी लिखते हैं कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपर हिट पसंद के लिए, थैंक यू सो मच। अजय भगत जी लिखते हैं कि ये सॉन्ग है जरा हटके, बिल्कुल अगली पसंद इसी बात पे मैं सुनाने जा रहा हूँ। और वो पसंद है हमारे जाकिर खान जी का, जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से। तो सुनवा दिया ये गाना, सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं।

0: पे छोड़ा है।
1: वेलकम बैक, और बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं। और सबसे पहले गजानंद जी लिखते हैं, जाकिर जी के पसंद, वाह कभी तो छलिया लगता है, मजा आ गया। एसबी वाला सुब्रमण्यम एंड लता मंगेशकर की आवाज में लाजवाब गाना, बहुत अच्छा लगा ये गाना। और साथ ही साथ नाहिद जी लिखते हैं कि सो लवली ऑसम फॉर माय जाकिर जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि ये कभी तो छलिया लगता है, वाह क्या गाना है। और मोहन हमारा जी लिखते हैं कि अमन जी जाकिर जी के पसंद सुपर हिट लगी है, थैंक यू सो मच उनको। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: आरजे अमन सर जी, जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल कर किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी।
1: ओके जी, धन्यवाद आपका भी। और साथ ही साथ ज्योति खटवड़े जी लिखते हैं कि भाई साहब की पसंद सुपर लाजवाब लगा है। और बीके पंथ जी लिखते हैं कि लाजवाब पसंद है, कभी तो छलिया लगता है। ओके, अजय भगत जी लिखते हैं कि अमन जी नाइस सॉन्ग चल रहा है ये जी, बिल्कुल। और सरिता सिन्हा जी लिखते हैं कि रवीना टंडन के साथ सलमान खान की शानदार जोड़ी का लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया जी, बिल्कुल। और अनिल मेहता जी लिखते हैं, वाह क्या बात है, क्या लाजवाब गाना है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और राधाकृष्ण गोप जी लिखते हैं कि अमन जी आज के सभी गाने तो एक से बढ़ गए जी, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि सभी गाने लाजवाब लाजवाब लाजवाब। संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग सुनने को मिला, मजा आ गया। और दत्ताक्रम जी लिखते हैं कि जाकिर जी के पसंद सुपरहिट, धन्यवाद देते हैं उनको। और राजू सिंह जी लिखते हैं कि नमस्ते आरजे अमन सर जी और सभी दोस्तों को भी, लाजवाब सॉन्ग चल रहा है, सभी गाने एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, हम भी आपके प्रोग्राम से जुड़ गए हैं। मैं हूँ राजू सिंह, मैं हूँ यानी कि चेन्नई से। अच्छा ओके, थैंक यू सो मच राजू सिंह जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और ये फीडबैक सुनते हैं।
3: गुड इवनिंग आरजे अमन सर जी।
1: जी गुड इवनिंग
3: अमन सर जी, मैं फुले भक्त संजू भाऊ। अब तक चले फरमाइश में, जैसे कि अभी फरमाइश चल रही है हमारे मित्र जाकिर खान जी इनकी, इनकी फरमाइश के पहले आपने संध्या पटेल जी इनकी फरमाइश चलाई सर, उनके पहले सुनीता गोप जी और राजेश कुमार जी, इन दोनों की आपने मिलीजुली फरमाइश चलाई सर, उनके पहले हमारे आदरणीय अशोक देशमुख जी, आदरणीय सर्वेश भगत जी, आदरणीय आत्माराम पाटिल जी और आदरणीय नंदलाल यादव जी, इन चारों दोस्तों की आपने मिलीजुली फरमाइश चलाई सर, उनके पहले आपने राधा कृष्ण गोप जी इनकी फरमाइश चलाई सर, उनके पहले आपने हमारे ग्रुप फरमाइश चलाई सर, और हमारे ग्रुप फरमाइश के पहले आपने अजय भगत जी इनकी फरमाइश चलाई सर, उनके पहले रंजीत कुमार जी इनकी फरमाइश चलाई सर, उनके पहले अमीना खान जी इनकी फरमाइश चलाई सर, और उनके पहले बिट्टू कुमार जी और अशोक पाल जी, इन दोनों की आपने मिलीजुली फरमाइश चलाई सर, और उनके पहले आपका ओपनिंग गीत। अमन सर जी, अब तक चले सभी गीतों में सभी गीत सुपर और सुपर से ऊपर है, और अमन सर जी आपका ओपनिंग गीत सर हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये गीत मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों की रानी, यह गीत हमें बहुत पसंद है सर, और यह गीत हमारे दिल के बहुत करीब है। थैंक यू सर, आपने यह गीत सुनवाया और इसी गीत से आपने आज अपने कार्यक्रम का आगाज किया। अमन सर जी, अब तक जितने भी गीत चले सर सभी दिल को छू गए, और आज के जो स्टार है सर सलमान खान जी, इनका तो क्या कहना है सर, इनके सभी फिल्म और सभी फिल्मों के सभी गीत सुपरहिट है सर, और आज का कार्यक्रम भी हमेशा की तरह लल्लन टॉप और रेडबुल हो रहा है सर।
1: अच्छा।
3: मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जाकिर मोलानी जी इनको, इन्होंने इतने अच्छे अदाकार अभिनेता को अपने हॉट स्टार द्वारा आमंत्रित किया, सच में सर मज़ा आ रहा है, साउंड क्वालिटी एकदम HD में आ रही सर। मैं फुले भक्त संजू भाऊ, रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना मरा दे अमन जी के साथ, थैंक यू।
1: धन्यवाद जी आपका फुले भक्त संजू भाऊ जी, इतना प्यारा आपने फीडबैक दिया। अमीना खान जी लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम का नाम है माउंटेन ड्यू, बहुत आप इन्हें कोल्ड ड्रिंक के आशिक है, ये तो साफ है यानी कि पता चलता है अमीना खान जी, और बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीती है, वैसे यानी कि कोल्ड ड्रिंक ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। और सर्वजीत शेट्टी जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल सॉन्ग है, ओके। और जाकिर खान जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। इसी बात पर अगला जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ वो यानी कि प्रमोद कुमार जी का, और ये गाना सभी दोस्तों को जैसा हमेशा डेडिकेट करते हैं, डेडिकेट कर रहे हैं, सुनवा दे प्रमोद जी, इंजॉय कीजिए। इसी फिल्म का ये दूसरा गाना है

0: वेलकम बैक। और बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं, बहुत सारे ये फीडबैक।
1: जय अमर सर जी, प्रमोद कुमार जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं जी।
0: धन्यवाद जी आपका भी। और प्रमोद यहाँ पे लिखते हैं बिट्टू कुमार जी के, प्रमोद जी के पसंद लाजवाब। और सर्वजीत जी लिखते हैं कि भाई प्रमोद जी की पसंद सुनकर तो मजा आ गया। और उनके पास से गजानंद जी लिखते हैं कि हमारे दोस्त प्रमोद जी के पसंद बहुत ही अच्छा लगा, तुमको ही देखते ही प्यार हुआ, मजा आ गया गाना सुनकर। और बीके पंच जी लिखते हैं सर जी यह भी बेहतरीन फरमाइश लगी, तुमसे ही देखते ही प्यार हुआ। और ज्योति जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग है, और इस मतलब मूवी के सभी गाने भी सुपरहिट हैं जी, बिल्कुल। और मोहन हमारे जी लिखते हैं कि ये तुमसे ही देखते ही प्यार हुआ, मजा आ गया गाना सुन के, धन्यवाद भाई प्रमोद जी। अमीना खान जी लिखते हैं कि सल्लू जी का ही गाना, ओहो बहुत ही अच्छा, वो माउंटेन ड्यू उनका यानी के प्रचार है जी, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं समझ गया आपकी बात। नाही जी लिखते हैं कि वाह सुपर सुपर सुपर वाली फरमाइश, थैंक यू सो मच प्रमोद जी। एंड इसहाक हुसैन जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब सॉन्ग चल रहा है जी, बिल्कुल। और हमारे आनंद जी लिखते हैं कि 1991 में और अब मैंने अपना इंटरमीडिएट 10+2 जस्ट यानी क्लियर किया था। अच्छा उसी समय आपने क्लियर किया। और सलमान जी का मैं मतलब डेडली फैन बन गया था, अच्छा ये बात है। अर्जय वंशिका जी लिखते हैं कि तुम इतने दिन थे कहाँ, बहुत ही लाजवाब गाना है, ओके। और शमशाद हुसैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब सॉन्ग। और अच्छा जी बिल्कुल यानी मजा आ गया। और यहाँ पे कुंता बेन जी लिखते हैं कि अर्जयमन जी मैं भी जुड़ गई हूँ, वेलकम है आपका भी। और सभी दोस्तों की को ये नमस्कार करिए, और प्रमोद जी की फरमाइश लाजवाब है। रवि मौर्य जी यहाँ लिखते हैं कि बहुत ही सुपर फरमाइश है, मजा आ गया इस गाने को सुनकर, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो गाना मैं सुनवाने जा रहा हूँ वो सुभाष तिवारी जी का गाना है, दिल तराशी का टाइटल सॉन्ग।

0: वेलकम बैक। और फिर बैक मेरे पास आ चुका है बहुत सारा, और ये पहला
1: जय अमन सर जी, सुभाष तिवारी जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं जी।
0: धन्यवाद जी आपका भी। और उनके पास है मोहन वाले जी, लिखते हैं कि दिल तराशी का सुपर हिट गाना अमेजिंग पसंद है। और सर्वजीत जी लिखते हैं सुपर हिट पसंद। एंड नाजिम जी लिखते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपर हिट पसंद के लिए थैंक यू सो मच। एंड और यहाँ पे यानी कि प्रमोद जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन सर जी, आपने हमारी फरमाइश को प्ले किया। और दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने वाले के लिए। और बी के पंच जी लिखते हैं सर जी अब ना छुपाऊंगा लाजवाब गाना। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि सुपर हिट पसंद और मजा आ गया इस गाने को सुनकर। नाहिद जी लिखते हैं सुपर हिट अमेजिंग पसंद के लिए थैंक यू सो मच। एंड ज्योति जी लिखते हैं कि भाई साहब की पसंद ब्यूटीफुल लगी है। एंड यहाँ पे संतोष गौड़ जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं कि बहुत बढ़िया बढ़िया गाने की आज रिक्वेस्ट आई है जी, बिल्कुल। गजानंद जी लिखते हैं कि सुभाष भाई जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है। एंड आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि ये सपनों में आऊंगी वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली पसंद, अच्छा यहाँ पे कुंता बेनी जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है। अगली पसंद है आर यहाँ पे काजल झक्का जी का। काजल झक्का जी लिखते हैं कि नमस्ते गुड इवनिंग, और सभी दोस्तों को नमस्ते गुड इवनिंग, मैं हूँ काजल सीतामढ़ी बिहार से। आज मैं गाना सुनना चाहती हूँ, सबसे पहले मेरे मिट्ठू मियाँ जी का गाना है। अमन जी आपको और आरजे वंशिका जी को और सभी सुनने वाले दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हूँ। सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक। बहुत सारे फीडबैक आ गया है मेरे पास और यहाँ पे सरोज भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, काजा झा जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी।
0: धन्यवाद जी। और उनके बाद से यहाँ पे दत्तक्रम जी लिखते हैं, काजल जी का गाना बहुत ही लाजवाब लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। और यहाँ पे बीके पंत जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपरहिट पसंद है, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए काजल झा काज जी को। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि काजल जी का गाना मुझे बहुत बेहतरीन लगा है। और उनके बाद नाहिद जी लिखते हैं कि वाह क्या पसंद है काजल झक्का जी की फरमाइश, सुपर ये फरमाइश है। सर्वजीत जी लिखते हैं कि एकदम झक्कास गीत है बिल्कुल। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि धन्यवाद देते हैं इतना लाजवाब गाना सुनवाने के लिए। और नाजिम जी लिखते हैं कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपरहिट पसंद है बिल्कुल। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
2: जी चाहता है चूम लू होठों को तुम्हारे, ये होठ क्या है जिस्मो जां है नाम तुम्हारे। अमन सर जी लाजवाब सा, दिल खुश हो गया। रूपचंद गोयल
0: जी जी धन्यवाद देते हैं आपको भी इसके लिए। और ये क्या कहते हैं। और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल फरमाइश है काजल जी, थैंक यू सो मच। और अमीना खान जी लिखते हैं कि शेर से बढ़कर इसकी शान, और दबंग है सबका भाई सलमान खान। और पत्थर भी मोम हो जाए उसकी ऐसी अदा से, वो हीरो है जो जादू है हर दिल की दुआ से। अच्छा ओके। और यहाँ पे क्या नाम है, अरुण मंडल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अरुण मंडल जी। लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं राजकोट से और सुन रहे हैं प्रोग्राम, वेलकम है आपका भी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि वाह वाह वाह वाह वाह क्या फरमाइश है। गजानंद जी लिखते हैं कि काजल जी का गाना मुझे बहुत बेहतरीन लगा, धन्यवाद देते हैं उनको। और आनंद जी लिखते हैं कि शरम बेवफा का सॉन्ग तो अच्छा है ही, और इसकी मुझे पूरी एक्सपीरियंस थी बहुत, बट यानी कि कुर्बान के गाने जो थे वो नहीं आए जी बिल्कुल। आज तो कुर्बान के गाने नहीं आए, तू जब जब मुझके पकड़े नहीं आए। आर्ज वंशिका जी लिखते हैं कि मुझे अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया, बहुत ही शानदार गाना है। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
3: काजल जी की पसंद एकदम झकास लगी है और गीत सुनकर मजा आया, धन्यवाद काजल जी। मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: धन्यवाद। अगली पसंद अनिल मेहता जी का सुनवाते हैं।
4: हेलो अमन सर, गुड इवनिंग। आज के इस प्रोग्राम में सलमान खान के सभी फिल्में, सलमान खान की सभी गीत की फरमाइश है। जो मैंने एक फिल्म लिया है दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म से, और गाने का शब्द है सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे में धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई। ये गाना सुनना है डेडिकेट रहेगा आरजे अमन सर को, आरजे परमर सर को, आरजे वंशिका को और ग्रुप के सभी दोस्तों को और ऑनलाइन सुनने वाले सभी दोस्तों को। अनिल मेहता सूरत गुजरात से।
0: ओके थैंक यू। ओके अनिल मेहता जी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो गाना है वो है मतलब हेलो ब्रदर का है, आपने गलत नाम लिया था फिल्म का। गाना प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए।

0: और मेरे पास फीडबैक बहुत सारे आ चुके हैं, तो शामिल करता हूँ सबसे पहले तो सर्वेश भगत जी का।
1: जय अमन सर जी, अनिल मेहता जी अपने गाने में शामिल किए हैं, भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू,
0: वेलकम जी आपका भी। और गजानंद जी लिखते हैं, दोस्त अनिल मेहता जी के पसंद फिल्म हेलो ब्रदर का लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के। ये फीडबैक,
2: सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ मैं तो धीरे धीरे, अनिल मेहता जी की पसंद लाजवाब है, उनको मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद। रूपचंद गोयल, बाड़मेर राजस्थान।
0: ओके जी, धन्यवाद आपका भी। और दिलीप कुमार जी जुड़ चुके हैं कोलकाता से, बहुत बहुत वेलकम है दिलीप जी। राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाना है, दिल खुश कर दिया भाई साहब ने। और कुंता जी लिखते हैं, बहुत ही प्यारी फरमाइश है अनिल मेहता जी की। और आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि पागल हुआ मैं धीरे धीरे, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक गाने के बाद मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ, आप लोग टेंशन न लीजिएगा, जवाब भेजना होगा रेडियो हॉटस्टार के ऐप से ही। ओके, तो आप सब तैयार रहेंगे, एक गाने के बाद मैं एक सवाल करने वाला हूँ आपसे अभी। और अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, और ये है दो दोस्तों की फरमाइश, जिसमें शामिल है अभिषेक तिवारी जी और हुकुम चंद जांगड़ जी, दोनों की एक ही पसंद है, तो सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए।

0: और राजेश कुमार जी लिखते यहाँ लिखते हैं अनिल मेहता जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है। एंड बीके पंत जी लिखते हैं सर जी बेहतरीन फरमाइश तेरी चुनरिया दिल ले गई है। और रूपचंद जी लिखते हैं मस्त गाना है ये मजा आएगा सुन के गाना सुन के। और गजानंद जी लिखते हैं अभिषेक तिवारी जी हुकुमचंद जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं लाजवाब सॉन्ग है। और रविंद्र गोरखपुर जी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत वेलकम है आपका भी रविंद्र गोरखपुर जी। और मोहम्मद शाहनवाज जी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि ये सॉन्ग मैं पहली बार सुन रही हूँ अच्छा लगा। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है ये मजा आ गया सुन के। नाहिद जी लिखते हैं कि अच्छा ओके जी ठीक है। और ज्योति जी इनका भी आगे दो दोस्तों का जवाब मेरे पास आ गया है। फुलबाग संजू भाव जी का भी जवाब आ गया है लेकिन सबसे पहले नाहिद जी का जवाब आया हुआ है। बिल्कुल सही जवाब है मुझे अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया ठीक है। कौन सा गाना सुनना चाहती हैं लिख के जल्दी से भेज दीजिए मुझे यहीं पे ओके। और फिलहाल मैं अगला गाना मैं प्ले करता हूँ आता हूँ इसी ब्रेक के बाद।
1: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ऑफ द वीक शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार अंतरा मस्ती में सुनिए दिए गए अंतरे पर आधारित गाने। लाइव शो में पार्टिसिपेट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से जो है 91-35-84-12-32 यानी 9135841232। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना बजाते रहो दिल से।
0: ओके धन्यवाद आपका भी। तो अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो सर्वजीत सेठी जी का है। सर्वजीत सेठी जी सुनना चाहते हैं आजा शाम होने आई तो सुनवा दिया सभी दोस्तों के लिए फजिल का पंजाब से।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं। और सबसे पहले तो रवि मार जी लिखते कि मुझे अल्लाह की कसम, हाँ आप तो देर कर दिया, सबसे पहले भेज दिया नाहिद अंसारी जी ने। बिल्कुल नाहिद जी लिखते कि ओल्ड चुनैदा मेरा गाना सुनना चाहती हूँ। ठीक है, मैं सुनवाता हूँ आपके इस गाने के बाद। और मीना जी लिखते हैं कि नमस्ते अमन सर जी, मैं भी जुड़ गई जी, वेलकम है। और ओके मैं देखता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि आज शाम होने आई, सरोजी शेट्टी जी के पसंद बहुत अच्छी लगी है। और अल्लाह की कसम जी, आपने भी जवाब सही भेजा है लेकिन थोड़ी सी देर हो चुकी है। वीके पंत जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार फरमाइश है, बिल्कुल। और गजानंद जी लिखते हैं कि सरोजी शेट्टी जी के पसंद का गाना आज शाम होने आई बहुत अच्छा लगा, सुनकर मजा आ गया है। दत्ताकरण जी लिखते हैं कि सरोजी शेट्टी जी आपका गाना बहुत लाजवाब लगा, धन्यवाद देते हैं। राधा कृष्ण गोपी लिखते हैं कि बेहतरीन लाजवाब पसंद के लिए शुक्रिया। एंड ज्योति जी लिखते हैं कि सभी सॉन्ग तो लाजवाब चल ही रहे हैं, बिल्कुल। और कुंता जी लिखते हैं कि सरोजी शेट्टी जी की पसंद बहुत ही प्यारी लगी है। और अच्छा जी, ओके जी। और हमारे यूट्यूबर आनंद जी लिखते हैं कि अच्छा जी जी जी, बिल्कुल हम समझ सकते हैं सर जी। ओके और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि आई लव दिस सॉन्ग, बहुत मजा आ रहा है सुन के। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सरोजी शेट्टी जी का गाना मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं। एंड आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि सरोजी जी का गाना बहुत अच्छा लगा। और आरजे, और हाँ ये क्या कहते हैं, आज यानी कि विनर बनी है नाहिद अंसारी जी, तो उनका गाना मैं प्ले कर रहा हूँ।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं, तो सबसे पहले एक फूले वक्त संजू बाबू जी क्या कहते हैं।
1: आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई, नो तू चल मैं आई। अमन सर जी, हमारे मित्र सर्वजीत शेट्टी जी, इनकी फरमाइश का गीत सर हमें बहुत अच्छा लगा और उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा इतने अच्छे गीत सुनवाने के लिए और गीत में याद करने के लिए। और अमन सर जी, इनके पहले आपने अभिषेक तिवारी जी और हुकुमचंद जहांगीर जी, इन दोनों की सर मिलीजुली फरमाइश चलाई सर, मज़ा आ गया। उनके पहले आपने अनिल मेहता जी, इनकी फरमाइश चलाई सर, और उनके पहले मेरी छोटी और प्यारी सी बहन काजल झक्का जी, इनकी फरमाइश चलाई सर, उनके पहले सुभाष तिवारी जी और प्रमोद कुमार जी, इन दोनों की अपने बैक टू बैक फरमाइश चलाई सर, मज़ा आ गया। आज का कार्यक्रम एकदम सुपर हो रहा है सर, मज़ा आ रहा है सर, और आप जो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजा रहे हैं सर, मेरे रंग में रंगने वाली चार चांद लगा रहा है सर, एक गीत जो संगीत चल रहा है सर इंस्ट्रूमेंटल में, मज़ा आ रहा है सर, आपका प्रस्तुतिकरण काबिले तारीफ, सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा इतने अच्छे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं फुले भक्त संजू भाऊ, रेडियो स्टार जो सभी को दीवाना नहीं पागल बना रहा है सर, थैंक यू।
0: ओके जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है आपका। और उनके पास से यहाँ पे ज्योति जी लिखते हैं कि नाही जी की पसंद सुपर लाजवाब, और उनके बाद से नाही जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। अभी आपका गाना बाकी है, ये तो आप इन विनर बनी है, उसके एवज में गाना बजाया आपका। राकेश शर्मा जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग चल रहा है, धन्यवाद देते हैं। और शमशाद हुसैन जी लिखते हैं कि यानी तेरी छाव में जब तुम यानी पास होते हो, अच्छा लिखते हैं यानी तारों की छाव में जब तुम पास होते हो, दिल के हर कोने में बस तुम ही तुम होते हो, ये आसमा भी सज जाता है ये तुम्हारी एक मुस्कान से, और लगता है कि जैसे यानी तारे भी हमारे इश्क की गवाही देते हैं। अच्छा जी, ये बात है। और यहाँ पे हमारे अनंत जी लिखते हैं कि सलमान सर जी का शो और चुनरिया वाला जादू ना बिखरे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, असंभव बिल्कुल। जब प्यार किया तो डरना क्या का सुपरहिट गाना सुनने को मिला, मजा आ गया है सुन के। और रूपचंद गोयल जी लिखते हैं कि लाजवाब लाजवाब लाजवाब पसंद है। एंड हमारे यानी कि प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि विनर बनने के लिए नाही जी को बहुत बहुत बधाई हो। और कुंता जी लिखते हैं कि लाजवाब पसंद चल रहा है, थैंक यू सो मच। और मीना कुमारी जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है मीना कुमारी जी, लिखते हैं कि नमस्कार, और हम भी अच्छा तो आपको मतलब ये गाने के लिए तो बहुत देर हो चुकी है क्योंकि स्टोरी आगे निकल चुकी है। अब ये गाना को मैं कहाँ बीच में फिट करूँगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, अच्छा कोशिश करूँगा लेकिन मैं कि प्रॉमिस नहीं करूँगा मीना जी। ओके, और मोहम्मद शाहनवाज जी लिखते हैं कि अमन सर जी, मेरा एक दोस्त है और नाम है उसका साबित अली, और उनकी वाइफ है, अच्छा वो नाराज है, अच्छा ओके भाई क्यों नाराज है, हमसे नाराज है, ये किससे नाराज है, ओके और अच्छा ओके तो ये जरा मुझे बताइए कि वो यानी कि किससे नाराज है, हमसे नाराज है या आपसे नाराज है, कि ताकि उसको मैं क्लियर कर सकूं। ओके तो ठीक है, ओके और भाई जो भी है अपनी नाराजगी खत्म कीजिए और शर्माजी से बातें कर लीजिए। आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि भाई नाही जी को बहुत बहुत बधाइयाँ आज के विनर बनने के लिए। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बिन मंजिल के मुसाफिर को जुनून मिल गया, बिन मंजिल के मुसाफिर को जुनून मिल गया, मुद्दत थी इन आवाज़ों को सुनने के लिए, आज आवाज़ सुना है अमन सर जी तो दिल को सुकून मिल गया, अच्छा क्या बात है। राधाकृष्ण गोप जी लिखते हैं कि सुपरहिट फरमाइश के लिए धन्यवाद देते हैं। और मीना जी लिखते हैं कि ये नाही जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई, थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लिखते हैं कि फुल अवक संजू भाव का फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा, उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ मैं। और अमीना खान जी लिखते हैं कि क्या बात है, बहुत ही लाजवाब, ओके जी थैंक यू सो मच। और अगला जो गाना मैं सुनवाने जा रहा हूँ, आज के सभी गाने बहुत ही मस्त हैं, तो ये दत्ताक्रम जी की पसंद है, और दत्ताक्रम जी गाना सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक। और मीना जी लिखती हैं कि इससे पहले जो गाना था ये नहीं जी का, वो गाना तो उस गाने से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जी धन्यवाद नहीं जी, आपने इतना प्यारा गाना सुनवाया है। फुलबाग संजू ये फुलबाग संजू भाव जी लिखते हैं कि नहीं जी को विनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। जी बिल्कुल। और मैं हमेशा एक सवाल किया करूँगा और वो सवाल होगा कि किस दोस्त का कौन सा गाना था, इससे संबंधित गाना हो, मतलब एक डेली का सवाल होगा। जो भी होगा विनर मैं उसे गाने को प्ले करूंगा, लेकिन अगर मैं भूल जाऊं सवाल करना तो आप लोग का वो काम है मुझे बीच में कभी कभी याद दिला देना कि एक सवाल कर लीजिए कि ताकि मैं सवाल कर लिया करूंगा। नहीं जी लिखते हैं कि वाह वाह एक नंबर फरमाइश है, थैंक यू सो मच दत्तक्रम जी। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: अर्जय अमन सर जी, दत्ता कदम जी अपने गाने में शामिल किए हैं, धन्यवाद देते हैं। और सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं जी, थैंक यू।
0: ओके जी। और मैंने इसलिए कहा कि मैं भुलक्कड़ नंबर वन हूँ, भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। ओके, अमीना खान जी लिखते हैं कि अर्जय अमन खान जी आपसे सवाल था आप किस हीरो के फैन है। अच्छा, मैं किस हीरो का फैन हूँ, अब तो सोचना पड़ेगा मुझे मैं किसी हीरो का फैन हूँ यार। देखिए एक्चुअली मुझे सलमान खान भी अच्छे लगते हैं और शाहरुख खान भी अच्छे लगते हैं और दोनों का मैं कम्बिनेशन हूँ। आप समझ गए ना। ओके यानी और मुझे आमिर खान भी अच्छे लगते हैं, यानी कि तीनों खान मुझे अच्छे लगते हैं। ओके और तो यानी कि तीनों का कम्बिनेशन हम में है। ओके आप समझ गए ना, यानी कि मुझे मतलब इन तीनों पसंद है। आर्जे वंशिका जी लिखते हैं कि दत्तक्रम जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और हमारे आनंद जी लिखते हैं कि भाई ये जलवे हैं सलमान सर के सुपर सॉन्ग ओ जाने जिगर। जी बिल्कुल। और नाहिद जी को आज के इनविनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। और शमशाद हुसैन जी लिखते हैं कि अमन भाई जान जरा अच्छे से नजर से जब नजर का रब्ता महसूस होता है, धड़कते दिल में चाहत का समा महसूस होता है, और खुदा से और क्या मांगे दुआओं में भला हम, क्योंकि तुम्हारी बाहों में सारा जहां महसूस होता है, वाह वाह वाह क्या बात है, ज्योति जी लिखते हैं कि लाजवाब पसंद है। और उनके बाद गजानन जी लिखते हैं कि दोस्त दत्तक्रम जी की पसंद बेहतरीन लगी है, सुनकर मजा आ गया है, शुक्रिया मेरे दोस्त। एंड यहाँ प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि ओ जाने जिगर ब्यूटीफुल फरमाइश है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
2: मंजर क्या हाल है? ठीक है,
0: बहुत अच्छे हैं आप बताइए।
2: अच्छा चल रहा है, सॉन्ग मजा आ रहा है,
0: धन्यवाद देते हैं शाहनवाज जी आपका। और कुंता जी लिखते हैं कि दत्ता जी की फरमाइश बहुत ही शानदार लाजवाब। राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, मजा आ गया सुन के। और ये सुन लेते हैं फीडबैक।
3: आमचे परम मित्र दत्ता कदम जी यांच्या आवडीचं गीत आम्हाला खूप आवडलं। दत्ता कदम भाऊ साहेब, मी तुम्हाला धन्यवाद बोलू इच्छितो, इतकं छानसं तुम्ही गीत ऐकवलं। और अमन सर जी, आज के सवाल के विनर बनी मेरे बहन नाहिद जी, इनको हमारे पूरे खुले परिवार की ओर से विनर होने की ढेरों ढेरों बधाइयाँ। और गजानन जी, आपको मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा, आपको हमारा फीडबैक अच्छा लगा। मैं फूलभक्त संजू भाऊ, धन्यवाद।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी फूलभक्त संजू भाऊ जी। दत्ता जी लेते हैं धन्यवाद अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और आनंद जी लिखते हैं कि नहीं सर जी आज तो यानी कि करण अर्जुन का भी गाना नहीं है, पता नहीं। और अमीना खान जी लिखते हैं कि नाइस आंसर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ बाबूलाल अंजाना जी का, यानी कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज मुझे मालूम हुआ, सच में मालूम हो गया, बहुत प्यार करते हैं।

0: बिल्कुल कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ, और बहुत सारे फीडबैक भी आ गया है। शामिल करता हूँ आरती वंशी का जी लिखेंगे बाबूलाल अंजान जी के पसंद, बहुत ही शानदार। और गजानंद जी लिखेंगे दोस्त, बाबूलाल अंजाना जी का गाना सुनकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं उनको। नाही जी लिखेंगे सुपर औसम फरमाइश बाबूलाल अंजाना जी की। और अनंत जी लिखते हैं कि माइंड ब्लोइंग सॉन्ग, यानी कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। बीके पंच जी लिखते हैं कि सर जी बहुत ही प्यारा गाना है ये, बिल्कुल। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत लाजवाब गाना है, थैंक यू सो मच सर जी। एंड यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि वाई डोंट यू रीड माई, मैंने तो आपका फीडबैक प्ले किया था, मैंने बोला था शायद आप नहीं सुन पाई होंगी, मैंने आपका जितना फीडबैक आया था मैंने फीडबैक आपका बोला था, है ना। और ये फीडबैक
1: अमन सर जी, मैं जितने भी मेरे पास हॉस्पिटल में पेशेंट पड़े लेटे हुए हैं मैंने सबको आपका दीवाना बना दिया है, सभी पेशेंट जितने भी हैं सभी आपका प्रोग्राम हॉट स्टार सुनते हैं,
0: अच्छा
1: वेट करते हैं कब आपका हॉट स्टार चले और वो गाना सुने,
0: अच्छा
1: तो जितने भी पेशेंट हैं मैंने सबको आपका दीवाना बना रखा है इधर हॉस्पिटल में, और बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका जो आपने हमको याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी भाई मोहम्मद शाहनवाज जी, और मैं दुआ करूंगा कि आप जल्द से जल्द अच्छा हो जाएं। दाता करम जी लिखते हैं बाबूलाल अंजाना जी गाना मुझे बहुत सुपर हिट लगा है, थैंक यू सो मच। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि लाजवाब फरमाइश के लिए बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी। अमीना खान जी लिखते हैं कि मोहतरम जाकिर मुरानी जी को तहे दिल से शुक्रिया, आज का बेहतरीन स्टार ऑफ द वीक क्या मेहमान लाने के लिए, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है ना चार चांद लगा रहे जी, बिल्कुल थैंक यू सो मच उनके लिए भी। और अब अगला जो गाना मैं सुनाने जा रहा हूँ गोविंदा खंडाते जी का, गोविंदा खंडाते जी सुनवा दी आपकी पसंद का, इंजॉय कीजिए।

0: ओके अब मेरे पास फीडबैक आ चुके हैं बहुत सारे, तो शामिल करता हूँ गजानंद जी लिखते हैं कि गोविंदा खंडादे जी की पसंद बेहतरीन लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और नाहिद जी लिखते हैं गोविंदा जी की पसंद बेहतरीन। और वीके पंच जी लिखते हैं कि सर जी ये वाला गाना तो लाजवाब चल रहा है। अच्छा मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गाना है, थैंक यू मीना जी। और रूपचंद गोयल जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपर सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार अमर भाई, मैं शिखा मिश्रा आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ। गाने बहुत मस्त चल रहे हैं और मैं एंजॉय कर रही हूँ, और आप देख रहे हैं तो मैं एंजॉय कर रही हूँ और फीडबैक लेकिन अब दे रही हूँ। हाँ, और समझ सकते हैं कि मैं फीडबैक अभी क्यों दे रही हूँ, और इंतजार में हूँ गाने का।
0: अच्छा। हाँ,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। बट गाने सारे बहुत मस्त चल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गाना गुनगुनाऊं थोड़ा सा?

0: ये वाला गाना सुनी मैं घुंघरा दी बहुत जोर से।
1: ओके ओके जी, और जो अगला फीडबैक है ये फीडबैक है किन का, जरा सा देखना पड़ेगा, जरा सा जल्दी जल्दी खुल जाए भाई। बिट्टू कुमार जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है, और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं बहुत ही शानदार गाने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। और कुंता जी लिखते हैं कि बाबूलाल अंजना जी के पसंद, गोविंदा खंडादे जी के पसंद शानदार लगी है, और वहां पे हमारे आनंद जी लिखते हैं कि मदहोश दिल की धड़कन सॉन्ग भी नहीं आया। नहीं नहीं नहीं आया सर जी, नहीं आया है। ओके, और अमीना जी लिखते हैं कि क्या मैसेज नहीं पहुंच, आपका मैसेज आया हुआ है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से किया आया था। मीना जी आपका मैसेज आया हुआ है मेरे पास, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ, आया है। ओके चलिए, आपको मेरा रिप्लाई भी मिल गया होगा, ठीक है। और जी लिखते हैं आनंद जी, क्या यानी कि आज क्या करें, इतने इतने सारे यानी कि प्यारे प्यारे हिट्स गाने हैं, और सभी के हिस्सों में एक से बढ़कर एक, जी समाना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, बात तो सही आपने कहा। अगला गाना जो मैं प्ले करने वाला हूँ वो मीना इब्राहिम जी का मैं प्ले करने वाला हूँ, और मीना इब्राहिम जी गाना प्ले कर दिया आपका सभी दोस्तों के लिए डेडिकेट करना चाहती हैं, बेताब दिल है धड़कनों की कसम।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दिया और बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास। गोविंदा जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमनसा जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, और मीना जी लिखते हैं कि मेरे रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए थैंक यू सो मच धन्यवाद। एंड गजानंद जी लिखते हैं कि मीना इब्राहिम जी के पसंद बहुत लाजवाब लगा है, बहुत शुक्रिया। और मुस्तफा जी सऊदी अरब से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है मुस्तफा भाई। और कैसे हैं आप बताइएगा जरूर। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि लाजवाब फरमाइश है जी बिल्कुल। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि ये मेरा गाना है, थैंक यू सो मच, अच्छा ओके जी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, अच्छा ये जा रहे हैं सोने, ओके जी गुड नाइट आपके लिए। नाहिद जी लिखते हैं वाह क्या बात है, मीना इब्राहिम जी बहुत ही शानदार गाना सुनवाया आपने, थैंक यू सो मच। बी के पंच जी लिखते हैं कि सर जी बहुत ही बेहतरीन गाना है, बेताब दिल है धड़कनों की कसम। और हमारे अनंत जी लिखते हैं कि बेताब दिल है धड़कनों की कसम, बहुत खूबसूरत गीत बिल्कुल। और सर्वजीत सेठी जी क्या कहते हैं,
1: धन्यवाद अमन सर जी आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिया उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और फुले भक्त सुनील भाव जी का फीडबैक बहुत ही शानदार लगा और कार्यक्रम बहुत ही जबरदस्त चल रहा है और सभी गीत एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, तो सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सर्वजीत सेठी फजिलका पंजाब से,
0: धन्यवाद सर्वजीत सेठी जी। और राधा कृष्ण को लिखते हैं इस गाने के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। अमीना खान जी लिखते हैं कि सब इतने बेहतरीन सॉन्ग है और लाते हैं कि माहौल खूबसूरत बन जाता है जी बिल्कुल। सभी गाने एक चमड़ के, लेकिन सभी गाने शामिल नहीं हो सकते हैं ना, क्योंकि बहुत ज्यादा गाने की फरमाइश है। आज कोशिश करूंगा कि मैं कुछ गाने को प्लेलिस्ट में ला के जाऊं ताकि यानी शो खत्म होने के बाद भी आप लोग सुनते रहें। और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि लाजवाब फरमाइश के लिए धन्यवाद देते हैं मीना जी को। और रविंद्र गोरखपुरी जी लिखते हैं कि मस्त गाना है और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अगला गाना जो है ज्योति खटवाड़ी जी सुनवाना चाहती हैं सभी दोस्तों को, ये बहुत ही प्यारा गाना है दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, तो सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए ज्योति खटवाड़ी जी। और गाना बहुत ही प्यारा है।

0: वेलकम बैक। सच में ये पगला है समझाने से समझे ना। और वैसे फीडबैक बहुत सारे आ चुके हैं मेरे पास। और नाई जी लिखते हैं वाओ बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है ज्योति जी, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे बी के पंत जी लिखते हैं कि बेहतरीन शानदार गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, ये पगला है समझाने से समझे ना। आनंद जी लिखते हैं कि अच्छा कुछ कहते हैं,
1: क्या बात है आज के शो की, एक से बढ़कर एक सुंदर खूबसूरत एट्रैक्टिव गाने आपके पेश करने के तरीके और दर्शकों की सॉरी श्रोताओं की पसंद जी। सारे लिसनर्स ने एक से एक जैसे मोतियों को चुन के इस शो में पिरो दिया।
0: बिल्कुल,
1: तो सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद, सभी लिसनर्स को भी धन्यवाद और आरजे अमन साहब आपको ढेर सारा धन्यवाद इस सुंदर शो के लिए। मजा आ गया आज के शो में।
0: धन्यवाद देते आनंद जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा और वैल्यूएबल फीडबैक दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ हमारे यशिका मिश्रा जी क्या कहती हैं सुनते हैं।
2: सब कोई मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन।
0: अच्छा अब तो मिल गया है ना।
2: सब कोई मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन, सदा सलामत रहे ये सजना उस सजना का आंगन।
0: अच्छा अच्छा,
3: वाह बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी इतना प्यारा सॉन्ग सुनाने के लिए, और अमन भाई इतना प्यारा सॉन्ग सुनाने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच दीदी। और वैसे यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि अमन जी सवाल कीजिए जी। अब सवाल देखिए डेली एक ही सवाल होगा ना, बार बार सवाल नहीं करूँगा, एक सवाल होगा और डेली होगा। ओके आप मुझे अब यानी कि कल दिलाइएगा यह सवाल करने के लिए। ज्योति जी लिखते हैं कि और हाँ ये यहाँ पे लिखते हैं हमारे गजानंद जी के, ज्योति खटवड़े जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं गाने में शामिल करने के लिए उनको। साथ ही साथ यहाँ कुंता बेनी जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल फरमाइश है, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है, दिल खुश कर दिया ज्योति जी ने, धन्यवाद देते हैं उनको। और मीना जी लिखते हैं कि वाह क्या बात है, क्या फरमाइश है। साथ ही साथ यहाँ पे आर्यन राज जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। लिखते हैं कि प्रोग्राम सुपर चल रहा है, सभी गाने एक से बढ़कर एक बज रहे हैं। सर्वजीत शेट्टी जी लिखते हैं कि ज्योति जी का गाना बहुत लाजवाब लगा, मैंने प्यार किया मूवी से शानदार गाना सुनने को मिला है। रूपचंद गोयल जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
4: दिल दीवाना इन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। अमन सर जी लाजवाब सॉन्ग, मजा आ गया। रूपचंद गोयल
0: धन्यवाद देते हैं रूपचंद गोयल जी। बिट्टू कुमार लिखते हैं बहुत ही सुपेट गाना है ये। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि अच्छा ये वाला गाना है, मैं आपके बता रहा हूँ कि चलो मैं पढ़ा दूँ एबीसीडी वो गाना, मतलब जैसे यानी कहानी के स्टोरी में वो गाना निकल चुका है, मतलब हम लोग बहुत आगे आए हैं, हम यानी पीछे जाए पढ़ाने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपके गाने के लिए, यानी मीना जी मत घबराइए। और शौर्य सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, बहुत दिन बाद आए हैं भाई, कहाँ थे शौर्य सिंह जी। ज्योति जी लिखते हैं कि अमन जी मैंने मुझे इस गाने के लिए इतना वेट करना पड़ा, लेकिन आपने गाना सुनवा दिया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा ओके अच्छा ओ दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, अच्छा पत्थर के फूल का, ओके मुझे नहीं पता था दिल दीवाना, मुझे लगा कि मैंने ध्यान नहीं दिया था, ओ माय गॉड सॉरी, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। कोई बात नहीं, मैं आपके गाने को जरूर प्ले करूंगा, अब तो गलती हो गई है ना। दिल दीवाना मैं सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए।
5: दिल
0: नहीं, ये भी नहीं है। दिल दीवाना, ओ माय गॉड मेरा कैसे हो गई, ये भी नहीं है, मेरे पास बहुत सारे दिल दीवाना वाला है ना गाना। दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना, आपको तो ढूंढना पड़ेगा तभी। इसका मेरे पास गाना है दिल दीवाना फ्रॉम पत्थर के फूल का, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, इसीलिए हमें लगा सिर्फ मेरे गाने को मतलब है कि मैंने वहां पे पढ़ लिया था कि दिल दीवाना बिन सजना के माना ना, और बस मैंने वो गाना प्ले कर दिया, यही मुझसे गलती हुई थी। हाँ, आपका गाना मुझे मिल गया, अब मैं प्ले कर रहा हूँ फिर से आपके लिए गाना है। सॉरी ज्योति जी, थोड़ा सा मैंने हमसे गलती हुई है।

वेलकम बैक। और अब तो सुन लिया होगा, उम्मीद करते हैं प्रमोद जी लिखते हैं ज्योति जी की पसंद मुझे औसम लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और काजल झक्का जी लिखते हैं थैंक यू गाना बजा देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का फीडबैक देने के लिए। ओम भाई गॉड, इतना देर के बाद फीडबैक आ रहा है आपका। और यहाँ पे तो दीना खातून जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, वालेकुम सलाम। एंड आनंद जी लिखते हैं कि आज आरजे वंशिका जी का कोई रिक्वेस्ट है? जी यानी होगा उनका रिक्वेस्ट सबसे यानी लास्ट में होगा, उनका रिक्वेस्ट आया हुआ है लेकिन वो होगा सबसे लास्ट में होगा उनका रिक्वेस्ट। और अमीना खान जी लिखते हैं कि अभी तो गुड फीलिंग यानी कि कर रहे हैं आप और लग रहा है कि दर्द है जी नहीं, अभी तो थोड़ा सा यानी कि कम हो गया दर्द, लेकिन अभी अच्छा है, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। अगर अच्छा नहीं होता तो प्रोग्राम बंद कर दिया होता अब तक। राधाकृष्ण गोपी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन पसंद है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि ज्योति खंडवाले जी की पसंद बेहतरीन लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, क्या लाजवाब गाना है, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी। एंड यहाँ सौरभ सिंह जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन गाना है। और रवि मौर्य जी लिखते हैं कि दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये वाला गाना यानी पत्थर के फूल का बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। ओके जी, और इसी बात पर अगला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ।

0: ओके, अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो हमारे यूट्यूबर जी है आनंद, और ये एनर्जेटिकल आनंद जी है, और ये इनका यूट्यूब चैनल है, और बहुत ही शानदार मतलब ये रिव्यू देते हैं। और तो इन आज इनकी फरमाइश है बाहों के दरमियां वाला गाना सुनना चाहते हैं, और सभी दोस्तों को, जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्तों को अपने गाने को डेडिकेट करना चाहते हैं। तो सुनवा रहा हूँ आनंद जी, इंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: गाना चाहती हूँ, आवाज और खामोशी टकराते गए फिर भी सपने जिंदा है ना ये नामुमकिन सपना, लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

वेलकम बैक बाहों के दरमिया हरिहरन की आवाज में। मतलब ये गाना जो है ना बहुत ही प्यारा है, और यहाँ पे कुंता बिनर्जी लिखते हैं कि दोनों ही गाने अच्छे लगे। जी अगला गाना भी बहुत अच्छा लगने वाला है आपको, हमें मालूम है ना, क्योंकि वो गाना बहुत ही प्यारा है। और उनके बाद यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि ओके मैं देखता हूँ, और आपका वो गाना मैं जरूर प्ले करूंगा, ABCD वाला, टेंशन मत लीजिए। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि आनंद जी की पसंद सुनकर आनंद आ गया, थैंक यू सो मच। और नाहिद जी लिखते हैं कि आनंद जी की पसंद वाह बहुत खूबसूरत लगी है, थैंक यू सो मच।

0: वाह लाजवाब सॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा सॉन्ग सुनाने के लिए। नाम क्या है?
1: आनंद जी।
0: नाम क्या है, क्या नाम है अमन भाई बता दीजिएगा।
1: बहुत तो बहुत धन्यवाद आनंद जी,
0: हमें ये गाना बहुत पसंद आया। और अमन भाई मैं ये मोबाइल अपने छुटका कर देने जा रही हूँ, और मेरा गाना अभी मत प्ले कीजिएगा, थोड़ा बाद में।
1: ये जरूरी है कि आपका गाना प्ले हो ही जाएगा, क्योंकि आज तो बहुत सारे गाने छूटने वाले हैं, इसलिए हो सकता है कि आपका गाना उसमें भी यानी कि प्लेलिस्ट में लग जाएंगे। ओके, और बीके पंत जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गाना है, ये भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और शौर्य सिंह जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना, जी बिल्कुल। राधा कृष्ण गोपी लिखते हैं कि सुपर हिट लाजवाब गाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।

0: डोले सुन के बदन धड़कन बनी जुबा बाहों के दरमिया।
1: बहुत ही सुपर लाजवाब सॉन्ग, मजा आ गया।
2: धन्यवाद देते हैं रवि मोहन जी। बहुत अच्छा, बहुत। और अमीना खान जी लिखते वाव सुपर सॉन्ग। और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि वाव वाव बहुत खूबसूरत लाजवाब शानदार फरमाइश के लिए थैंक यू सो मच आनंद जी। अगली पसंद जो है वो नाहिद अंसारी जी की है और नाहिद अंसारी जी सुनना चाहती हैं फिल्म जीत का ये लाजवाब गीत। और अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। और गाना सभी दोस्तों को डेडिकेट है।

अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो और फीडबैक भी आ गया है बहुत सारा। नहीं जी लिखेंगे, थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। साथ ही साथ आरिफ सिंधी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत बहुत दिन बाद जुड़े हैं, बहुत बहुत वेलकम है। वालेकुम असलाम। और लिखते हैं कि नाही जी की फरमाइश बहुत ही शानदार लगा है, उनको तहे दिल से शुक्रिया इतना प्यारा गाने में शामिल करने के लिए। और गजानंद जी लिखते हैं कि नाही जी की पसंद अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, सुनकर मजा आ गया, बहुत शुक्रिया। बीके पंत जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। और आनंद जी लिखते हैं कि वाह क्या बात है, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, वाह इतने प्यारे गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और नाजिम जी लिखते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपर हिट पसंद नाही जी की। और एमडी नूर आलम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम एमडी नूर आलम जी। और लिखते हैं कि आपके प्रोग्राम से जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम नूर आलम जी। एंड राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपर फरमाइश है, बहुत वेलकम है। और यहाँ पे कुंता जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत गाना है, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, थैंक यू सो मच। एंड नाही जी लिखते हैं सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और सुनील कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, तो बहुत बहुत वेलकम है सुनील कुमार जी। और अगला गाना मैं सुनवाता हूँ, और जिसे ले गए हैं रविंद्र गोरखपुरी जी ने, रविंद्र गोरी

बिल्कुल, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे हमारे सनम और प्रमोद कुमारी संग औसम पसंद है जी बिल्कुल। और यहाँ पे यानी कि प्रशांत अम्बुलकर सर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं सर जी गुड इवनिंग, और बहुत देर से मैं कार्यक्रम को सुन रहा हूँ, बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है, और मगर एक दो लोगों के फीडबैक अच्छा ओके, तो जरा बता दीजिएगा वो नाम मुझे, मैं कोशिश करूंगा। और आर्यन राज जी लिखते हैं कि नाही जी के पसंद बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और नाही जी लिखते हैं कि वाह एकदम सुपर शानदार फरमाइश है ओके। और बिट्टू कुमार जी लिखते हैं अमन जी अमन सर जी जरा से धूप में कम अच्छा काम चल रहा है ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आराम कीजिए आराम कीजिए। आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि बहुत शानदार फरमाइश सुनाने के लिए बहुत शुक्रिया। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, सुनकर बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं क्या जानोगे हमारे सनम, सुनकर बहुत अच्छा लगा है। अमीना खान जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत पसंद है, और ये फीडबैक

0: बहुत ही शानदार गीत और कार्यक्रम बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। तो सुनते रहे रेडियो होस्ट चार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरबजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
1: धन्यवाद देते हैं आपको भी और कुंता बेनी जी लिखते हैं वाह बहुत ही शानदार फरमाइश है। ओके धन्यवाद देते हैं। मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है क्या गाना है क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं। और पीकू राय जी जुड़ चुके हैं वेलकम है। और उसके बाद से अगला गाना अच्छा कोई बात नहीं है। ये जो भी ऐड आता है वो आधे घंटे के बाद एक आता है मतलब 90 सेकंड के लिए ऐड आता है। ओके आधे घंटे बाद आता है हमेशा नहीं आता है। कोई बात नहीं फिलहाल अगला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ और ये गाना है किनका ब्यूटी जी का मुझे दिख रहा है फरमाइश देखा है पहली बार सुनवा दिया। इंजॉय कीजिए ये गाना तो बहुत प्यारा है।

जबरदस्त जबरदस्त अब सॉन्ग तो देखा है पहली बार, बहुत प्यार करते हैं और सभी जबरदस्त गाने हैं मतलब साजन मूवी के। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जाकिर खान जी लिखते हैं देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार, बहुत ही प्यारा गाना लगा है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे सरवजीत जी लिखते हैं कि लवली सॉन्ग है, जी बिल्कुल लवली सॉन्ग तो है। और किशन पाल जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है, लिखते हैं सुपर सॉन्ग सुनने को मिल रहा है और मजा आ रहा है सुन के। और प्रशांत अम्बुलकर जी लिखते हैं कि साजन फिल्म का शानदार गाना और इस फिल्म से मेरी खास यादें जुड़ी हुई हैं। अच्छा, और कुंता बनर्जी लिखते हैं कि वाओ वेरी नाइस सॉन्ग है। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि सुपर लाजवाब पसंद के लिए धन्यवाद देते हैं। नाहिद जी लिखते हैं वाओ एकदम लाजवाब फरमाइश। और अमीना खान जी लिखते हैं कि आई तो 90s का जाकर वापस आ रहे हैं ये यादें, बिल्कुल। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सुपर पसंद चल रहा है। और गजानंद जी लिखते हैं कि देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार, बहुत ही प्यारा गाना है। मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, क्या लाजवाब गाना। अगली पसंद है वो पूजा भास्कर जी की है और सुनना चाहती हैं साथिया तूने क्या किया, तो सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

क्या क्या सच में गाना बहुत लाजवाब लगा ना, और मजा आया ना। और मेरे पास अभी अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, हमारे दोस्त इसहाक हुसैन जी का। इसहाक हुसैन जी, गाना मैंने आपका प्ले कर दिया, एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक। और मैं थोड़ा फीडबैक मतलब इन बाद में शामिल करूंगा, लेकिन अगला गाना जल्दी से प्ले करता हूं। और ये मीना जी यानी मीना कुमारी जी ये सुनना चाहती हैं, आओ मैं पढ़ा दूं तुझे बीसी। बेचारी बहुत देर से कर रही है ट्राई, तो चलिए इनका गाना मैं प्ले करता हूं, सुनवाता हूं।

वेलकम बैक। और मेरे पास फीडबैक आ रहे हैं, लेकिन मैं फीडबैक बाद में शामिल करूंगा अगर टाइम मिलेगा तो। और अगला गाना और आखिरी गाना मैं प्ले कर रहा हूँ आरजे वंशिका जी का, और ये गाना सभी दोस्तों को हमेशा की तरह डेडिकेट करती है। तो सुनवा रहा हूँ ये रात और ये दूरी, इंजॉय कीजिए।

0: और बता देता हूँ कि आज के हमारे टॉप लीडर बोर्ड के विनर बने हैं बीके पंत जी। अगर बीके पंत जी सुन रहे हैं तो जल्दी से अपना गाने के बोल लिख कर भेजिए, मैं आपके गाने को प्ले कर दूंगा। चूंकि अब मैं प्रोग्राम को खत्म करने वाला हूँ इसीलिए, और सर्वजीत जी लिखते हैं बहुत ही शानदार गीत सभी, और मीना जी लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत है, धन्यवाद देते हैं। और उनके बाद यहाँ पे मीना जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, जी आपका भी वेलकम है। और रवि मौर्य जी लिखते हैं अमन सर जी शुभ रात्रि सबाकर, जी जी जी शुभ रात्रि, मैं भी लेने वाला हूँ विदा, आपसे घबराइए मत। वीके पंत जी लिखते हैं कि अरे भाई आज तो आप यानी विनर बने हुए हैं, बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे। एंड यहाँ पे यानी तरसेम सकबू जी लिखते हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आपका भी। और आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं सुपर हिट लाजवाब पसंद के लिए, धन्यवाद देते हैं ये फीडबैक।
1: अमन सर जी, आज का कार्यक्रम आपने एकदम बढ़िया और लाजवाब सजाया, आपकी प्रस्तुति काबिले तारीफ। आज के जो मेहमान थे सर सलमान खान जी, इनके सभी गीत अब तक अपने हॉटस्टार पर एकदम सुपर चले सर। सभी श्रोताओं को मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा इतने अच्छे फरमाइश करने के लिए। और आरजे वंशिका जी, आपका जो गीत चला है हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और अमन सर जी, आपको दिल से शुक्रिया, आपने इतना अच्छा कार्यक्रम सजाया। मैं फूले भक्त संजू भाऊ, धन्यवाद।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन फरमाइश लगी है, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ कुंदा बनी जी लिखते हैं कि अमन सर जी आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार हुआ, सभी दोस्तों की फरमाइश और आरजे वंशिका जी की फरमाइश बहुत ही लाजवाब लगी, सुपर लगी, सभी को थैंक यू सो मच। नाही जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी फरमाइश है ये रात और ये दूरी, जी बिल्कुल। और अमीना खान जी लिखते हैं कि अच्छा ओके ओके ठीक है। और यहाँ पे यानी कि बीके पंत जी लिखते हैं कि जी जी आपका इसने यूं सर जी, देखिए आप लकी ड्रॉ में आप यानी कि विनर बने हुए हैं, जल्दी से बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, तब तक मैं एक अपने पसंद का गाना मैं प्ले करता हूँ, और यानी तब तक इसको आप इंजॉय कीजिए। और आप जो गाना सुनना चाहते हैं, चूंकि आप इन विनर बने हुए हैं, मैं आपके गाने को जरूर शामिल करूंगा, तो ये गाना मेरी पसंद का एंजॉय कीजिए। 12 महीने में 12 तरीके से मैं प्यार उठाऊंगा।

और अनंत जी लिखते हैं कि ये रात और ये दूरी वाला गाना बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आरजे वंशिका जी फॉर दिस मेलोडियस सॉन्ग के लिए। अमीना जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। अच्छा जी, और अभिकर पंत जी ने अपना गाना भेज दिया है, और गजानंद जी लिखते हैं कि आरजे वंशिका जी का पसंद मुझे बेहतरीन लगे है। तो इसी गाने के साथ यानी बीके पंत जी आज जो यानी विनर बने हैं उनके गाने के साथ मुझे डीजे प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6:30 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब बाय बाय।

0: अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो?
1: हंस नहीं रहे दोस्त, रो रहे हैं तुम्हारी अकल पे और हम सबकी बेखूबी पर। एक दीवाने ने ख्वाब देखा जंगल में और उसकी तस्दीक के लिए हम सब दीवाने तुम्हारे दरबार में पहुंच गए।
0: ये दीवानगी नहीं, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हुए देखा है। विजय, पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं।
2: हम ये कैसे मान सकते हैं यार कि एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारण कर ले और जब जी में आए फिर से सांप बन जाए।
3: मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं।
1: मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार।
0: चंद साल पहले तुम्हारे जैसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही ऐसा करते थे।
4: ओ फिलोसोफर साहब, आप अपनी फिलॉसफी से सच को झूठ में नहीं बदल सकते।
0: अरे भाई, ये इच्छाधारी सांप सदियों से है और जो बात सदियों से सच है वो आज भी सच है, समझे?

0: गोली किसने चलाई?
1: मैंने।
0: क्यों?
1: अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता।
0: वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है, और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
2: लेकिन अब क्या करूँ, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती?
0: जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में

0: करे शोर।
1: करे शोर।
0: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: देखो हम पर शक ना लाओ, अब जो मिलना।
1: अच्छा जी,
0: अब जो मिलना बांध के सहरा ही मिलना सरकार।
2: तो अगले इतवार

तो बस मुझको खाना भी तो

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार।

में घोड़ा। सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।